0: every Tuesday and Friday, 1 p.m., Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara dev soera ma
2: Nepali super hits
0: only on Kips FM 98.3
3: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज में शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधवार दिउँसो 3 बजे

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: Red Bounty FM.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
2: दिल दीवाना, बिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकै रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
1: दिल दीवाना बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: Kit 98.3 FM, your companion.
1: The weekly countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
2: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
1: on KIPS 98.3 FM.
3: Sunao lo yaad, sunao lo geet. Bollywood Golden Hits. KIPS FM 98.3 MHz ma. Aitabar ra Mangalbar diusu 4 baje. सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा.
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
6: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
8: यू कैन डांस,
9: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
10: जस्ट ट्यून इन
11: KIPS FM 98.3 MHz, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जेनरेशन.
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको.

0: छाता भने पालभरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: सुनौलो याद, सुनौलो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स। Keeps FM 98.3 megahertz ma. आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे, सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो Keeps FM मा।

भीमेश्वर को मेला बेड़ भाई को बेला बुझो ए भीमेश्वर को मेला बेड़ भाई को बेला लाई देव माया ए।

0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to KIPPS FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल KIPPS FM 98.3 MHz मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी
3: Best romantic Hindi song.
4: Best romantic Hindi song.
3: Best romantic Hindi song. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m.
5: Pehla nasha, pehla khumar.
3: Station KIPPS FM 98.3 MHz.

0: 예쁘지 짱 구독해.
1: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेत
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
3: अब बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 एम्पियर 150 एम्पियर 200 एम्पियर का ट्यूबुलर बैटरी सुपथ मूल्य में तपाई का पुराना इन्वर्टर बैटरी को एक्सचेंज सुविधा तपाई का पुराना इन्वर्टर बैटरी ल्याउनुहोस् र नया ट्यूबुलर बैटरी लग्नुहोस् साथ ही तपाई को इन्वर्टर यूपीएस मरमत समार का लागि सम्झनुहोला
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: Enjoy the cover version of your favorite songs. Covermania at 98.3. Covermania at 98.3.
8: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m.
9: Ek phool jare rakhibo. Ek phool jare rakhibo.
2: Nepali Super Hits.

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: Tips, 98.3 FM.
1: Yeah, here you go.
0: Your companion.
2: Your companion.
3: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

0: साथ नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यु आर।
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम।
7: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12।

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: Johor Kips FM 98.3 MHz.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
2: दिल दीवाना, बिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू, तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: हिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे
3: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion.
4: Kehi naulo.
5: Rochak.
4: Ani achamma lagne tathyaharu. Keeps 98.3 FM ma yo ho karyakram radio ma rochak.

0: every Tuesday and Friday, 1 p.m., Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara te phoera ma
2: Nepali Super Hits
0: only on Kips FM 98.3
3: You can dance.
4: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
4: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
5: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. Just tune in, radio नयाँ जेनेरेसनको.
6: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
8: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार.
9: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
8: गजल संसार.
9: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी.
10: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: life-changing quotes. मृत्युले जीवन समाप्त गर्छ, सम्बन्ध होइन। यो भनाइ हो मिच एल्बमको।
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
3: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion. The radio of new generation.
8: What's the secret to success?
2: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
2: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
9: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत। जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको
10: नेपाली पप गीतहरूको उतार चढाव कुन गीत कुन स्थानमा छ, साथै नेपाली पप गीतहरूबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नुहोला। Keeps most wanted. Keeps most wanted.
11: हरेक शनिबार मध्याह बाह्र बजे, आइतबार राति आठ बजे र मङ्गलबार बिहान नौ बजे।
12: नेपाल भाषा या न्याय पुछे चौमे त
13: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक। Station Keeps FM 98.3 megahertz.